याज्ञा करामः। सर्वबलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद। अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव। මේ කී දේ අපගේ ස්වාමී වූ ජේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසාම අපට ලැබේවා. ආමෙන්.

याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमार्य तुमांगे गतहा प्राणय उबिगे श्री कुमार अट उबिन वासस्थाने अक्वन लिस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतटु सीकरनो तुमीगे दयाबर आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवरत मरनेन गैलवीम सेलसु मैनव मैं की दे अपगे स्वामी ओ जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।

0: जय श्री वेवा।
1: इसे स्वामिनी ओब सबबिन्म सुविशुद्धे सिलु सुविशुद्धतावे उल्पत बोहान से में एहिन बोहान से गे आत्मेनंगे अनुभावेन मे पांडु परिशुद्धवत करण में न पियाई दिब अपे से अदुने में पांडु अपुदेसा अपे स्वामिन वन जेसुस क्रिस्तुन महान से गे श्री शरीर श्री रुधिर बावट पत्वनु संधाये उन महान से दुख सहित मरनेट सिय कमेत्तिन पूप कमेत्तिन पवरादी मिट पेर पूपे रागेनो बहान सेट तुति पुदा एक खड़ा मिसी कीमिन सिय श्राव के इंट दुन सेक ओब सम में गेन अनुभाव करन सब बिन में ओबुदेसा पवरादेनु लबन मागे शरीर आई රාත්‍රි භෝජනයේ වැළඳු පසුව උන්වහන්සේ සේම කුසලානද රැගෙන නැවත තුති පුදාමසේ කියමින් සිය ශ්‍රාවකයන්ට දුන්සේක ඔබ සැම මෙයින්ගෙන පානය කරන්න සැබවින්ම මෙය අභිනව වූද අනන්ත වූද ගිවිසුමේ මාගේ රුධිර කුසලානයි පෞකමාව සඳහා ඔබ උදෙසාද සියලු මනුෂ්‍යයන් උදෙසාද වගුරුණු ලබන්නේ මාස්සී කිරීම පිණිස මෙය සිදු කරන්නේ